0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: लोक लहरी
3: उज्यालो रेडियो नेटवर्क मा यो हो लोक लहरी